वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रहरा साहेब हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखता आया राम राजे, हरणाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, हंकार निंद कपिट दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख तम ना होई, तू करता करना मैं नही, जाहो करी न होई, बलहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाए लख्या रहा, जात मह जोत जोत मह जाता, काल कला पर पुर रहिया, तू सच्चा साहिब सिफत सोहल्यो, जिन कीती सो पर पाया, कहो नानक करते किया बाता, जो कुछ करना सो कर रहिया, सो दारा गासा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

दोखतेरहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ लेह उबारी सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट दोखते लेहो बछाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता किलब किस कल ने को हरता दुष्ट दोख ने को छे करता श्री अस दुज जय पैंदे आला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सब आपत कोई अड़ल सुने गुंग जो यह सुरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पो निकट न तिन्नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह स्वयं पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहा मत एक न मनियो सिमृत शास्त्र वेद सभा बहु पेद कहा हम एक न जानियो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखानियो दोहरा सगल तुअर को छाड़ के कहियो तुहारो दुआर पाहेगा है की लाज अस गोविंद दास तुहार रमकली महला तीज आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सती मन वज आवा धाया रा

नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाव सतगुरु से तीरतिया दरगह पाए ठाव कहो नानक कृपा करे जिसनो एवत दे जग मह उत्तम काढ़िया विले के महला पंजवा